0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: आश्रया FM 90 नाडिनोपम नाटारकोपम।